0: ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छू वो हवावा विच तू, दिल विच तू, साहा विच तू, मैं जित्थों मिलूंगा ना रहा विच तू। इको आ दुआ मेरे उस रब नू, मैं जिन्ने पल भी जीवा होवे पहा विच तू।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव पे।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रख कर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi everyone, this is Benny Deol here.
6: Benny Deol here.
5: Olive Radio 106.3. Jubindas.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

Radio Olive, your happiness frequency.

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस. Radio Olive, your happiness frequency. Geo

अरे भाई, कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi guys, this is Abhar Shetty Khurana, and you are listening to Radio Olive.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी। जुरिता गांधी,
4: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर वन।
3: यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
4: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर वन।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सी आर सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिस योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: The big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
4: हाय, आई एम राजकुमार राव।
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन, अनस्टॉपेबल।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Hi, this is A.R. Rahman.
4: A.R. Rahman.
3: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
4: Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network. I'm

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.

यूं तो देखिए अपने फोन की सिम कार्ड को चेंज करने के लिए मुझे चार लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं। अब ये जो आपकी कशिश है ये ना टेक्नोलॉजी की भाषा बोलती है। जी वेलकम एंड गुड इवनिंग, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए टेक टॉक शो लेकर आ गई हूँ, जहां पर वीकेंड को और ज्यादा स्पेशल मैं बनाऊंगी। टेक्नोलॉजी की जरा बातचीत जो है वो हम करेंगे कि क्या कुछ नए लॉन्चेस हुए हैं, क्या कुछ अपडेट्स आए हैं एंड क्या ऐसे फैक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको जानने चाहिए। सो वाइब को मेंटेन रखते हुए जरा आगे बढ़ते हैं एंड अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करते हैं। देखिए कहीं जाइएगा मत, क्योंकि लौट के मैं यही आने वाली हूँ एंड अमेजिंग बातें जो है वो जारी रखने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहो 106.3 रेडियो ऑल पर, शो चल रहा है टेक टॉक, मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रन। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन, अनस्टॉपेबल।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, main hu Vivek Anand Oberoi. Radio. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: I'm the number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: 106.3 Radio Olive, Jio Bindas.
8: G-E-C-A.

पहले देखो मम्मी पापा जो है वो कंसर्न रहते थे कि हमारा बच्चा जो है टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कहीं इसकी आंखें खराब ना हो जाए, कहीं इसके पीठ में दर्द ना होने लग जाए, या कहीं ये कोई इसको बहला फुसला ना। लेकिन आजकल हम जो है वो डरे रहते हैं अपने मम्मी पापा के लिए कि कहीं मम्मी पापा को कोई बहला फुसला के इनके साथ स्कैम ना कर ले। हाँ जी, टेकटॉक आपके लिए लेकर आ गई हूँ। वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा इस वीकेंड स्पेशल शो पे हम बातचीत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। सो अब देखिए यार, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड हो रही है, स्कैमर्स भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, एंड स्कैमर्स से बचने के लिए टेक्नोलॉजी फिर अपने आप को खुद अपग्रेड कर रही है। सो देखिए, गूगल ने जो है एक रियल टाइम स्कैम डिडक्शन जो है वो फीचर लॉन्च किया है, जहां पे आपके डिवाइस का जो AI है, ये फीचर जो है कॉल के दौरान बैकग्राउंड में जो है वो चलता रहेगा बिना आपका डेटा गूगल को भेजे, और अर्जेंसी पैटर्न में, यानी अगर सामने वाला जो है अगर बोल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है या तुरंत गिफ्ट कार्ड जो है वो खरीद लीजिए, तो AI जो है इस अर्जेंट टोन और लैंग्वेज को जो है पकड़कर स्क्रीन पर जो है बड़ा सा लाइकली स्कैम ऐसा नोटिफिकेशन जो है, वार्निंग जो है वो फ्लैश करने लग जाएगी, जिसके बाद आप जो है सतर्क हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं कि यार ये तो स्कैम हो सकता है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो खुद आपके लिए बेहतरी की कोशिश कर रही है कि आप किस तरीके से स्कैम ना हो, लेकिन अगर आप अपना दिमाग बंद रखेंगे, अपने कान आंख हाथ मुंह नाक बंद रखेंगे, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। सो देखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ये अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करते रहिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: मैंने अभी से पहले कभी भी किसी गेम को इतना बड़ा मीम बनते हुए तो देखो नहीं ही देखा था। अंजी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश और शो टेक टॉक आपके लिए लेकर आ गई हूं आपके वीकेंड्स को और स्पेशल बनाने के लिए जो है मैं आ चुकी हूं। अब देखिए यार बच्चे जो है छोटे से बड़े हो गए GTA 6 के इंतजार में लेकिन GTA 6 जो है वो आ ही नहीं पा रहा है। काफी सारी लीक्ड फुटेजेस जो है वो हमें GTA 6 की देखने को मिल जाती हैं जहां से लोग अनुमान लगाने लग जाते हैं कि यार क्या कुछ खास होने वाला है। सो GTA 6 का नेक्स्ट लेवल NPS इंटेलिजेंस जो है वो सामने आया जहां पर अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस होंगी। रॉकस्टार गेम्स के लीक के हिसाब से GTA 6 में जो रास्ते पर चलने वाले आम लोग होते हैं ना वो पहले से स्क्रिप्टेड डायलॉग ही बोलेंगी, उनमें एक छोटा सा AI मॉडल होगा जो इंटीग्रेटेड होगा और वो मूड के हिसाब से रिएक्शन देंगे। अगर आप गेम में किसी भी NPS के पास जा रहे हैं और वो अजीब बिहेव करेंगे तो वो आपके कपड़ों पे, आपकी कार पे या आपके एक्शन के हिसाब से एकदम यूनिक वाला रिएक्शन जो है वो देंगे। तो दो अलग प्लेयर्स एक ही NPS से अलग अलग रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकते हैं। यानी सपोज आप जो है एक NPS के पास यानी एक कैरेक्टर के पास गए गेम में एंड वो आपके दोस्त को अलग रिस्पॉन्ड कर रहा है ना आपको अलग रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि अब NPS जो है वो हमारा मजाक उड़ा दें, हमें रोस्ट कर दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: यो लिसन आउट देयर

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: J-E-C.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

हैं, मतलब थेरेपिस्ट को हम एक अच्छी एडवाइस के लिए पैसे दे देते हैं, चैट जीपीटी के जो है सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छी एडवाइस मिल सके. लेकिन लेकिन लेकिन एक वक्त था जब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो फ्री में मिला करती थी. सो 1995 से पहले आपको इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट का अगर नाम रखना है, डोमेन नेम लेना है, रजिस्टर करना है, तो उसके लिए एक रुपये, एक पैसे, एक रियाल भी नहीं देना पड़ता था. हाँ जी, सो आप चाहे तो google.com, apple.com या कुछ भी फ्री में अपने नाम जो है वो कर सकते थे. 1995 के बाद नेटवर्क सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी आई और इसने जो है पैसे लेना शुरू कर दिया. इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में लोग बहुत जो है रखना चाहेंगे खुद के नाम पर, इसीलिए हम एक काम करते हैं, इस पर पैसे चार्ज करने लग जाते हैं. एंड इनका बिजनेस मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो गया. अब लाखों करोड़ों में जो है एक एक डोमेन नेम जो है वो बिकता है. और अगर आपने बचपन में अपनी ईमेल आईडी गलत नाम से बना दी है, डोमेन गलत नाम से बना दिया है, फिर तो भूल जाइए. वैसे याद तो आपको ये भी रखना है कि अमेजिंग वाले गाने आपको सिर्फ रेडियो ऑलिव पर मिलने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड रहिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: The big, the big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!

गाना तो आपने सुना ही होगा, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखने वाले ने अपने बॉस के लिए लिखा होगा। हाँ जी, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी कशिश, 106.3 रेडियो ऑलिव पर शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे वीकेंड को और ज्यादा स्पेशल और टेक्नोलॉजी कली आपको फ्रेंडली बनाने के लिए। मतलब ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोलना था तो मैंने बोल दिया। वैसे ये कहते कहते मुझे रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि मेरे बॉस को पता चल जाए कि मैं ऐसी चीजें जो है रेडियो पे बोलती हूँ। तो देखो, आप तो बिल्कुल मत बताना। खैर, मैं ये कह रही थी कि बॉस की नज़रें हम जहाँ जहाँ जाएं ऑफिस में, वो हमें फॉलो करती हैं और ये ध्यान रखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो बस मेटा ने लोगों का काम जो है वो ट्रैक करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो है इन्वेंशन किया। मेटा का जो माउस है उसकी ट्रैकिंग को लेकर एक कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई थी, जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट के लिए मेटा ने एक नया सॉफ्टवेयर जो है टेस्ट किया था, जो चेक करता था कि एम्प्लॉय का माउस जो है वो हर सेकंड में कितनी बार हिल रहा है, ताकि पता चल सके कि वो सीट पर बैठा है या नहीं बैठा है। अब देखिए, इसको जो है बैकलैश भी मिल रहा है। एम्प्लॉयज ने इसे प्राइवेसी का वॉयलेशन बोला है और मैसिव इंटरनल प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल मेटा ने इसे रोक दिया है एंड थोड़ा चिल रूल्स दिए हैं, पर ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो तो बने ही हुए हैं। अब देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं बोलते बोलते ऐसे झिझक जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बॉस को ये ना लग जाए कि मैं काम चोर हूँ। वैसे वीकेंड है, काम की बात नहीं करते हैं, अमेजिंग गानों की बात करते हैं। तब तक आप जो है मुझे 3311063 पे मैसेज करके ये बता सकते हैं कि क्या आपके बॉस भी आपके काम पे नज़र रखते हैं और क्या वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके काम पे नज़र रखते हैं, बताइए मुझे। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए और मेरे साथ यानी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
2: हाय, मैं हूं सुहाली खान एंड यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: GECN.

जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन अपग्रेड होती जा रही है ना, मुझे तो डर लगने लग गया है कि अब मुझे AI पे प्रॉम्प्ट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में कोई सवाल आएगा और AI उसका जवाब मुझे दे देगा। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। वीकेंड किस तरह से जा रहा है आपका, या आप मुझे व्हाट्सएप पे आके बता दीजिए 3311063 पर, और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दूंगी। हाँ जी, सो RTX Spark सिस्टम जो है इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि अब आपको ChatGPT या किसी और टूल को चलाने के लिए इंटरनेट या किसी दूर के सर्वर पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आपका लैपटॉप जो है वो खुद एक मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह जो है वो बिहेव करने लगेगा। हाँ जी, प्राइवेसी एंड स्पीड की अगर हम बात करें तो क्योंकि सारा डेटा आपके PC के अंदर ही प्रोसेस होगा तो आपकी प्राइवेसी सेफ रहेगी, और रिस्पांस टाइम जो है वो मिली सेकेंड से भी कम होगा। मिली सेकेंड से कम क्या ही होता है, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं लोग। वैसे नया लैपटॉप अगर हम बात करें तो सरफेस लैपटॉप अल्ट्रा प्रीमियम जैसे डिवाइसेस जो है इसमें स्पेशलाइज चिप जो है वो लगाकर आ रहे हैं आजकल मार्केट में, जो स्पेसिफिकली हैवी AI वर्कलोड्स को जो है हैंडल कर सकते हैं एंड आपकी लाइफ को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। इन शॉर्ट आपकी लाइफ को भी हैंडल कर सकते हैं। मुझे कई बार लगता है कि मुझे जो है लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा AI मॉडल मुझे मिल जाए फिर मेरा जीवन जो है वो सुखद है। मम्मी आप भी ये बात समझ जाओ तो आपको भी दामाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को इन्जॉय कीजिए और थोड़ी सी देर में मैं लौट कर आने वाली हूँ, सो मेरा इंतज़ार जो है वो करते रहिएगा। बाकी गाने इन्जॉय कीजिए और मेरे साथ यानी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

मुझे ना पहले ऐसा लगा करता था कि जो लेगो और पजल्स जैसी जो चीज होती है ना, ये सिर्फ पैसा वेस्ट करने की जो है एक तरकीब है कि इतने इतने पैसे कौन खर्च करता है एक खिलौने पर. लेकिन फिर अब अडल्टहुड की तरफ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये खिलौने नहीं है. नहीं नहीं नहीं नहीं, ये तो स्ट्रेस कम करने का, खुद पे इन्वेस्ट करने का एक तरीका है. हाँ जी, वेलकम बैक. कैसे हैं आप लोग? 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश, और आपके लिए टेक टॉक वाला शो जो है वो लेकर आ गई हूं, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. एंड अगर आप भी लेगो के फैन हैं, या फिर लेगो के फैन नहीं है और पोकेमोन के फैन हैं, सो आपके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है. इंटरैक्टिव ब्रिक्स आ गई हैं अब. यानी इन लेगोज में एक छोटा सा सेंसर जो लगा हुआ है और LED लाइट्स लगी हुई है. सो आप जैसे ही पिकाचू या चारिजार्ड को जो है बिल्ड कर लेते हो, तो आप एक ऐप के जरिए उन्हें स्कैन करके डिजिटल अरीना में जो है बैटल करा सकते हो. तो आपका फिजिकल लेगो जो है वो मॉडल्स जो है उन पर अटैक करेगा एंड रियल लाइफ में रिएक्ट करेगा. देखो कितना अमेजिंग है ना ये, कि आप किसी चीज को अपने हाथों से फिजिकली लेगो से बिल्ड कर रहे हो एंड उसे स्कैन करने के बाद आप उसे लाइवली देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे अपने फ्रेंड्स के लेगोस के साथ लड़ते हुए. How cool is this? मतलब मैं ना अभी recently summer splash हो रहा है वहाँ पर गई थी, एंड वहाँ पर मैंने एक फिश में जो है पेंटिंग करी थी, उसको कलर किया था, एंड उन्होंने उस फिश को स्कैन करके टीवी पे जो है एक ओशन में वो उसको तैरा रहे थे, और वही मुझे इतना कूल लगा था. एंड उसके बाद ये लेगो वाली चीज मैंने सुन ली है. ओ माय गॉड, कितनी तरक्की कर चुकी है यार टेक्नोलॉजी. वैसे अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओ बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

पहले मुझे लगता था कि वीकेंड पे काम कौन करता है. मैं बताती हूँ वीकेंड पे काम कौन करता है, जिसे अपने काम से बहुत प्यार होता है और जिसे अपनी ऑडियंस से बहुत प्यार होता है. वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और टेक टॉक शो जो है मैं आपके लिए लेकर आई थी, जहां पर बहुत सारी अमेजिंग बातें हमने की, अमेजिंग गेम्स की बातें की, हमने न्यूज पे बात की, हमने फैक्ट्स पे बात करी, हमने इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. लेकिन अब मेरी भी बारी है यार वीकेंड सेलिब्रेट करने की, तो मैं यहां से जाती हूं आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ वीकेंड सेलिब्रेट करके बहुत मजा आया. अब मुलाकात होगी कल हमारी मेरे शो में, सो स्टे ट्यून्ड. बाकी अगर आप लोगों के पास मेरे लिए थोड़ा भी प्यार है या कोई भी फीडबैक है तो 3 पर जो है हाई कशिश ऐसा लिख कर जो है वो आप मुझे भेज सकते हैं. बाकी अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आ ही रहे हैं, इन्हें एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैप्पी वीकेंड.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. सो भाई, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वीकेंड्स की, तो वीकेंड्स तो भाई कल ही ऑफिशियली स्टार्ट हो गए थे. लेकिन वीकेंड का जो सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है, तो प्लान क्या है, बस यही हर कोई पूछ रहा होता है. तो लोग थर्सडे से ही अपनी आइटनरी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं. ब्रेकफास्ट यहाँ पे होगा, कॉफ़ी वहाँ पर होगी, शॉपिंग कहाँ पर होगी, डिनर उधर होगा. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा प्लान है कि कोई प्लान ही नहीं बनाना, जैसे कि मैं. सो मैंने भी ऐसे ही किया. वैसे ऑनेस्टली जून का जो वीकेंड है, फर्स्ट वीकेंड है जून का, कतर में थोड़ा सा स्पेशल होता है. बाहर टेम्परेचर अपनी अलग ही परफॉर्मेंस दे चुका होता है और अंदर मॉल्स, कैफेज, इवेंट्स फुल एनर्जी में चल रहे होते हैं. सो आज के हैप्पी वीकेंड शो में हम बात करेंगे कि दोहा के बिगेस्ट इवेंट्स कौन से हैं, शॉपिंग डील्स कहां पर चल रही हैं, फैमिली एक्टिविटीज की और उन प्लेसेस की जहां पर इस वीकेंड आप जा सकते हो. तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ब्रेकफास्ट बनाकर, लंच बनाकर, फ्री होकर अब आप घर से निकल चुके हो कि भाई डिनर तो बाहर ही करेंगे, तो मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर्स बताती हूँ कि आप अच्छी जगह पर जा पाओ. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे विद मी, क्योंकि वीकेंड ऑफिशियली शुरू हो चुका है. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

सो अगर आपको लगता है कि शूज बस पहने जाते हैं, तो दोहा ने प्रूव कर दिया है कि शूज कलेक्ट भी किए जाते हैं, सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और उनके लिए लोग लाइन भी लगाते हैं। स्नीकर्स कॉन दोहा का पहला एडिशन अब ऑफिशियली हिस्ट्री बन चुका है। 3 दिन के इवेंट में 33,000 से ज्यादा विजिटर्स आए हैं और ये अटेंडेंस स्नीकर कॉन के ग्लोबल हिस्ट्री की सबसे बड़ी अटेंडेंस बनी है। मतलब न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस और इवेंट को जो दोहा से पहले हो चुके हैं, मतलब सबको कतर ने पीछे छोड़ दिया है। सो DCC का 7,000 स्क्वायर मीटर एरिया पूरे स्नीकर हेवन बन चुका है। रेयर जॉर्डन्स, लिमिटेड एडिशन नाइकी कलेक्शन, जो बड़े बड़े कलेक्टर्स होते हैं वो यहां पर आते हैं, जिनको शूज कलेक्ट करना पसंद है, सब एक ही जगह पर। और टोटल सेल्स आपको पता है अभी तक 1.2 मिलियन से ज्यादा कतरी रियाल की लोग शॉपिंग कर चुके हैं। सो अब सवाल यह है कि लोग एक पेयर शूज के लिए इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्नीकर्स आज फैशन नहीं आइडेंटिटी बन चुके हैं, बिल्कुल वॉचेस या लग्जरी बैग्स की तरह। मतलब मेरे को कभी इन सब चीज़ों का शौक रहा नहीं बेसिकली, और कुछ स्नीकर्स की जो मैं रीसेल की वैल्यू की बात करूँ तो मतलब इतने ज़्यादा महंगे बिकते हैं कि वो ग्रो होते रहते हैं विद टाइम। सो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फ्री में दुनिया का भी कोई भी स्नीकर मिल जाए तो वो कौन सा होगा, कौन सा चूज करोगे आप? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग हैप्पी वीकेंड, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

कल व्हेन आई वाज इन लाइफ मस्त है मैं बात कर रही थी साइकिलिंग की और फ्यूचर दोहा जो है वो साइकिल फ्रेंडली होने वाला है. सो एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपको बताती हूँ. कतर में लगभग 19% लोगों के पास बाइसिकल है, पर माइक्रो मोबिलिटी डिवाइस भी है, लेकिन डेली ट्रैवल में उनका यूज जो है वो 1% से भी कम होता है. क्या मतलब, क्या बोलूं अब मैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड. इसको चेंज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अपडेट कतर बाइसिकल मास्टर प्लान लॉन्च किया है और नंबर्स काफी एम्बिशियस हैं. 3,800 किलोमीटर से ज्यादा साइकिलिंग रूट्स, 110 किलोमीटर स्पेशल क्रॉसिंग, 7 मेगा हब्स जहां पर साइक्लिस्ट जो है वो ई स्कूटर यूज करने के लिए बनेंगे. और अब इमेजिन कीजिए फ्यूचर में आप मेट्रो से उतरो, स्कूटर या साइकिल लो और सेफ्टी डेस्टिनेशन तक अपना सेफली पहुंच जाओ. ठीक है, ये सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं है, ये हेल्थ के लिए भी है. और इवन रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सिटीज साइकिलिंग फ्रेंडली होती हैं उनमें पब्लिक हेल्थ जो है वो ज्यादा बेटर होती है. और दोहा का वेदर जो है वो 12 महीने साइकिलिंग के लिए परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक आप इसे बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हो. ये बहुत अमेजिंग होगा. अगर सेफ डेडिकेटेड साइकिल लेन्स हर जगह बन जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाए. मैं तो वो अच्छे वाले वेदर में ऑफिस भी साइकिल से जाना पसंद करूंगी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. Stay tuned, Jio, Bindaas.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: द बिग बिग बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास। यस, जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। ऑफर वैलिड अंटिल 13th June 2026 ओनली। हरी
3: Joyalukas, world's favorite jeweler.

सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई कतर में कौन कौन सी चीजें हैं जो पिछले हफ्ते हुई, जैसे कि स्नीकर कौन दोहा जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े. लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट कतर आउटलेट एग्जीबिशन. वीकेंड का सबसे डेंजरस प्लेस है DECC. अगर आप शॉपिंग से बचना चाहते हो तो शायद ये आपको ना स्किप करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं बच पाओगे. आई नो दैट यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स. सो क्योंकि कतर आउटलेट एग्जीबिशन वापस आ चुका है, वेन्यू है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर DECC. अब मैं इसकी बात करूं तो ये ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुका है और 9 तारीख तक रहने वाला है, 1 बजे से मिडनाइट तक है. सो सैटरडे और से ट्यूसडे तक का जो टाइम है वो रात को 10 बजे तक है. और सबसे अच्छी बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है. यहाँ फैशन ब्रांड्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, होम आइटम्स हैं,

इलेक्ट्रॉनिक्स है और सब पर हैवी डिस्काउंट। अब मुझे एक चीज बहुत फनी लगती है कि हम मॉल्स में जाते हैं एक चीज लेने और वापस आते हैं मतलब 5 bags भर भर के लेके और फिर घर आकर बोलते हैं कि ये सब सेल में था। सेल दुनिया का सबसे पावरफुल मार्केटिंग वर्ड है, लेकिन एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, डिस्काउंट देखकर मत खरीदा, नीड देखकर हमेशा चीजें खरीदा, वरना सेल खत्म होने के बाद वॉलेट सैड हो जाता है और हम हर बार पूछते हैं कि यार आज शॉपिंग लिस्ट बनाकर शॉपिंग करते हैं या फिर यू नो शॉपिंग करके लिस्ट बनाते हैं कि यार ये तो नहीं खरीदना चाहिए था। बाय द वे कौन सी कैटेगरी में है आप? 3311063 is my number, you are listening Radio Olive, stay tuned, Jio Bindas।

सो जब भी जून आता है ना, लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं. एक ग्रुप बोलता है बाहर बहुत गर्मी है और दूसरा ग्रुप बोलता है चलो मॉल चलते हैं. और इसीलिए विजिट कतार का हलास समर 2026 फिर से फुल स्विंग में है. मतलब आई एम लाइक कि भाई वीकेंड पे जो भी चल रहा है सब आपको बता देती हूँ कि पूरे कतर में कौन कौन सी नई चीजें हैं. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स. ये कैंपेन पूरे समर सीजन में चल रहा है और इसमें ना फैमिली एंटरटेनमेंट, होटल डील्स, शॉपिंग प्रमोशन और किड्स एक्टिविटीज सब कुछ इंक्लूडेड है. कतर का समर ना सिर्फ इंडोर सीजन नहीं है, यहाँ पे इवेंट सीजन भी इसे कहा जाता है. कमिंग वीक्स में टॉय फेस्टिवल, फैमिली शोज, गेमिंग एक्टिविटीज और बच्चों के लिए काफी सरप्राइजिंग प्लान हैं. पर आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं इन सब की बात करूँ तो आप पेरेंट्स हैं तो समर वेकेशन सर्वाइव करने के लिए एक्टिविटीज की लिस्ट ना बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे पूरा दिन घर पे रहते हैं और फिर ऐसा लगता है कि यार इन्हें किसी ना किसी एक्टिविटी में मतलब इंडल्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू यू मैनेज? आप समर में स्टेकेशन पसंद करते हो या फिर इंटरनेशनल वेकेशंस? बताओ मुझे 3311063 पर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिनोम राज। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर मनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम राज। वन फैमिली वन मिशन, अनस्टॉपेबल।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

आजकल बाहर निकलो तो लगता है एसी और इंसान के बीच में सच्चा प्यार है। टेम्परेचर आपको पता है कितना हाई हो रखा है और ह्यूमिडिटी भी साथ में है ही, तो इंडोर एंटरटेनमेंट्स ही हीरो बन चुके हैं। दोहा के मॉल्स आजकल सिर्फ शॉपिंग सेंटर्स नहीं है, पूरे एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बन चुके हैं भाई। सिनेमा, बोलिंग, ठीक है, किड जोन, इंडोर स्पोर्ट्स, सब एक ही रूफ के नीचे। एंड आई एम लाइक कि यार यही हेवन है। You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम Yes Happy Weekend. Research के according Gulf countries में indoor entertainment industry जो है वो rapidly grow कर रहा है, क्योंकि लोग जो है वो experience करना चाहते हैं without weather stress. और honestly Qatar ने इसको बहुत अच्छे से develop किया है. मेरा सवाल आपसे ये है कि already Friday चल रहा है, Friday की भी शाम हो गई है, so आपका favorite mall कौन सा है Qatar में? आपका favorite indoor weekend spot कौन सा है पूरे Qatar में? बताओ मुझे 3311106 3 पर। हो सकता है कि किसी और का भी वही हो। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

सब पुरानी चीजें इतनी कूल कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। आजकल एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, लोग नए प्रोडक्ट से ज्यादा पुरानी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। विंटेज वॉचेस, विंटेज कैमरास, विंटेज फैशन, और इसी ट्रेंड को सेलिब्रेट कर रहा है कटारा का विंटेज मार्केट। यहाँ आपको यूनिक यू नो बहुत अच्छी अच्छी कलेक्टेबल्स चीजें मिल जाएंगी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आर्ट पीसेस और काफी इंटरेस्टिंग फाइंड मिल जाएंगे आपको। सो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया जो है हैप्पीनेस ट्रिगर करता है, इसीलिए लोग पुरानी चीजों से इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। और ऑनेस्टली कभी कभी ओल्ड थिंग्स में कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आपके पास कोई पुरानी चीज है जो आज भी आप संभाल कर रखते हैं, आपको लगता है कि ये तो किसी यू नो लव्ड वन ने गिफ्ट किया था, या ये वॉच तो ऐसी है जो अब इस जमाने में मिलेगी नहीं, या आपके पेरेंट्स की कोई ऐसी पुरानी चीज जो आपको बहुत पसंद है, बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सीख ले।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

सुपर हिट गानों के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स। भाई ये की शाम में आपको अरिजीत सिंह भी सुनने के लिए मिल रहे हैं और यू नो आपके फेवरेट सिंगर्स के गाने भी यहां पर आ रहे हैं। सो वीकेंड का मतलब सिर्फ शॉपिंग नहीं होता, होता है कि भाई आप आराम से सुकून से लाइव म्यूजिक भी इंजॉय करें, अच्छे अच्छे गाने सुने, यूट्यूब पे अपने फेवरेट पॉडकास्ट देखें। और दोहा में वीकेंड जो है वो बहुत ही यू नो डिफरेंट होता है हर किसी के लिए, और ऑनेस्टली ये जो कॉम्बिनेशन है कभी फेल नहीं होता। एक तरफ सोलफुल म्यूजिक है, दूसरी तरफ बॉलीवुड के फेवरेट्स हैं, और रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइव म्यूजिक जो है वो स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकता है और मूड को इम्प्रूव करता है। इसीलिए लोग कॉन्सर्ट्स और लाइव परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आप मुझे बताइए आपकी प्लेलिस्ट में ज़्यादा बॉलीवुड होता है या फिर सूफी म्यूजिक? 3311063, या फिर आपको लगता है कि यार जो रेडियो ऑलिव प्ले कर दे वही हमारा फेवरेट गाना है। बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: चिकन ना कैलोरीज काउंट करने के लिए नहीं होता, ये स्टेटमेंट साइंटिफिकली गलत है लेकिन इमोशनली बिल्कुल सही लगता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। भाई यहाँ पर वीकेंड और फूड का कनेक्शन ना अलग लेवल का होता है, ब्रंचेस, डेजर्ट्स, कॉफी, लेट नाइट स्नैक्स, मतलब कतर का फूड सीन भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। हर महीने नए कैफेज ओपन होते हैं, स्पेशली कॉफी ट्रेंड ना इतना ग्रो कर रहा है। और अगर मैं मतलब बात करूँ पेस्ट्रीज और आपके फेवरेट चीज़ों की तो हर हफ्ते वायरल हो जाती है भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, फूड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फूड सिर्फ टेस्ट नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए लोग रेस्टोरेंट्स का एम्बियंस के लिए वहाँ पर जाते हैं। एंड आई हैव 2-3 फेवरेट कैफे ऑफ माइन इन पर्ल और मिश्रिब में एक कैफे है जिसका मुझे हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है, एक कैफे आई हैव इन पर्ल जिसकी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। तो आई एम श्योर आपके भी कोई ना कोई चीट मील्स और फेवरेट कैफेज होंगे। सो अगर आज चीट मील अलाउड है आपको, फ्राइडे है तो ऑफकोर्स, तो आप क्या ऑर्डर करने वाले हो बाहर जाके? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Radio Olive, your happiness frequency.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

पानी की बॉटल अब जो है वो एक एसेसरी बन चुकी है। मतलब आजकल दोहा में दो चीजें सबके पास होती हैं, फोन और वाटर बॉटल, और होना भी चाहिए। समर ऑफिशियली फुल पावर में आ चुका है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन सिर्फ प्यास नहीं लगवाती बल्कि मूड, एनर्जी, फोकस सब पर काम करती है। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि सब पर इफेक्ट डालना ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोकोनट वाटर ट्राई करना चाहिए। इसीलिए हाइड्रेशन में सनस्क्रीन और शेड्स आजकल बहुत ज़्यादा लग्जरी बन गया है भाई, नेसेसिटी बन गया है। ये लग्जरी तो नहीं पर एक और बात है जो सिर्फ आपको दे सकती है, विच इज़ कोल्ड ड्रिंक हाइड्रेशन नहीं करती, पानी बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपका बन सकता है। सो लोगों को लगता है कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, आइसक्रीम खा लो, आपको ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा, पर मैं आपको बता दूं इसमें इतनी शुगर होती है ये आपको हाइड्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं देता। सो आप डेली कितनी बॉटल्स पानी पीते हो आप ये कैलकुलेट करो और मुझे अभी बताओ कि देखो शाम पूरी ढलने को आ गई है तो अभी तक आपने कितने लीटर पानी जो है सुबह से पी लिया है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

0: सो बच्चों की समर वेकेशंस और पेरेंट्स की सर्वाइवल टेस्ट दोनों एक साथ होती हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड। समर वेकेशन ऑफिशियली पेरेंट्स के लिए फुल टाइम प्रोजेक्ट बन जाता है। बच्चा सुबह उठकर पहले सवाल पूछता है, आज कहाँ चल रहे हैं हम, और इसीलिए कतर में फैमिली एक्टिविटीज़ की डिमांड जो है वो हर साल इंक्रीज होती रहती है। टॉय फेस्टिवल, वर्कशॉप्स, इंटरैक्टिव शोज, इंडोर अट्रैक्शन, सब का पर्पस एक ही है कि फैमिली टाइम को मेमोरेबल बनाना है। इवन रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट बिल्कुल याद नहीं रहते। सो उनके साथ ना कुछ नया रोज़ नया एक्सपीरियंस लीजिए, उनके लिए कोई स्पेशल क्लासेस ढूंढिए, चाहे वो स्विमिंग है या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लासेस या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो उन्हें बहुत पसंद है, पेंटिंग, ड्राइंग, व्हाटएवर दे लाइक। सो आपकी चाइल्डहुड समर वेकेशन की फेवरेट मेमोरी क्या होती थी? भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे होता था कि भाई नानी के घर जाने के लिए मिलेगा और वहां पर हम कुछ भी खेलें, कुछ भी खाएं, हमें कोई रोक टोक नहीं होती थी। सो आप मुझे बताइए आपकी चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी होती थी। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
4: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.
5: Cool song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिन उमरान। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली, वन मिशन, अनस्टॉपेबल।

सो वीकेंड तो कल ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था, आज फ्राइडे भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, पर वीकेंड खत्म होता है या स्टोरीज स्टार्ट होती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड के साथ आपको बहुत सारी नई कहानियां मिलती हैं। और दोस्तों, वीकेंड का असली पर्पस ना सिर्फ रेस्ट करना तो नहीं होता, रिचार्ज होना होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, फ्रेंड से मिलना होता है, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होता है, कभी कॉफी, कभी ड्राइव, कभी एक अच्छा मील, कभी बस घर पे एसी और नेटफ्लिक्स। लाइफ का बेस्ट मेमोरी यूजुअली प्लानिंग से नहीं बनता, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से ही बनता है। तो

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3

हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाद के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए।

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त हिट।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM.